फरमाइशें पूरी करने के लिए तो मैं आपके साथ आता हूँ इन द शो ऑल इज वेल। घड़ी में बज चुके अभी 8:26 और आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम लेकर आए हैं 1981 की फिल्म याराना का एक सुपरहिट गाना जिसे सुनकर आज भी महफिलें सज जाती है। जब भी अमिताभ बच्चन जी के उन अनोखे लाइट वाले कॉस्ट्यूम और किशोर कुमार जी की जादुई आवाज का जिक्र होता है और इस गाने की फरमाइश की है संतोष धोत्रे ने और इस गाने को लिखा था अनजान साहब ने और लिखकर इस गाने को उन्होंने अमर कर दिया। अमिताभ बच्चन जी ने खुद इस गाने के लिए उस शानदार लाइट बल्ब वाले आउटफिट का आइडिया दिया था और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, जैसे ही वो लाइट झिलमिलाती है ना वो अपने आप नहीं होती है, उसका रिमोट अमिताभ बच्चन जी के हाथ में था, बीट के हिसाब से उस लाइट्स को वो ऑन ऑफ कर रहे थे लेकिन पूरे गाने में कभी वो हमें नजर नहीं आता कि अमिताभ बच्चन जी के हाथ में वो रिमोट होगा। कुछ इतना परफेक्ट गाना वो शूट किया था और उस दौर के लिए तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए फिर देर किस बात की, महसूस कीजिएगा 80s के जमाने का रंगीन अंदाज और झूम उठिए किशोर दा के सदाबहार गाने के साथ सारा जमाना हसीनों का दीवाना। ये फरमाइश पर हम गाना प्ले कर रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 एंड स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान।

नेते मंडळी म्हणतात, सगळे म्हणतात की पेट्रोल आहे, पण आपल्या शहरात कुठे पेट्रोल दिसतच नाहीये. सब जगा बस ड्राय ड्राय और ड्राय नजर आ रहा है. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आप आम आदमी का एक काम बढ़ गया है, वो है पेट्रोल भरने का. आप कहोगे क्या पेट्रोल भरना कोई काम होता है, लेकिन आज के दौर में यही है भाई. मैंने कुछ खुद महसूस किया. कल मुझे पूरा आधा घंटा लगा था पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े खड़े, किसी किसी को एक एक घंटा लग रहा था. तो ये भी किसी काम से कम नहीं है ना. और बाकी तो नेते मंडली कहते हैं, हर कोई कह रहा है कि पेट्रोल तो अब बहुत है अपने इंडिया में, लेकिन ऑन ग्राउंड पेट्रोल कुछ अवेलेबल है ही नहीं. चाहे फिर आप अपने शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर जाओ, वहां पर आपको लंबी लंबी कतारें नजर आएगी. और भाई सुबह सुबह 6:30 बजे से लोग पेट्रोल पंप के बाहर खड़े है अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए. आणि प्रशासनाकडून असं आवाहन करण्यात येत आहे की विना कारण तुम्ही टंकी फुल करू नका. सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ न्यूज फॉरवर्ड हो रही थी जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल खत्म होने वाला है और इस डर के मारे लोग अपने गाड़ियों की टंकी फुल कर रहे हैं. आम आदमी के माइंड में यही सवाल होता है ना कि यार अगर कल को पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं मेरी गाड़ी कैसे चलाऊंगा. इस वजह से वो पेट्रोल पूरी तरीके से भरता है. और एक सवाल है, प्रशासन तो कह रहा है कि पेट्रोल अवेलेबल है, तो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल क्यों नहीं दिख रहा है और अपने शहर के बहुत से पेट्रोल पंप क्यों बंद हो गए. खैर आप इसमें कितनी सच्चाई है और क्या छुपा है ये तो ऊपर वाला ही जानता है. बस मैं भी आपसे इतना ही कहूंगा कि भाई जितनी पेट्रोल की जरूरत है उतना ही पेट्रोल भरिएगा, सब लोगों को पेट्रोल अवेलेबल हो जाए. अफवाह पर यकीन मत कीजिए, इतनी एक दरख्वास्त है. और सुनते रहिए.

कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है भाई, देखते देखते इनके मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ गए। आरजे अदनान को आप सुन रहे हो इन द शो ऑल इज वेल। 5 दिन के अंदर तकरीबन इनके 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर, एंड जिस बात का डर था वही हो गया था। सभी को लग रहा कॉकरोच जनता पार्टी इतने हाइप पर है, इतने फॉलोअर्स बढ़ रही है, कहीं इनका अकाउंट बैन ना हो जाए या कोई अकाउंट इनका हैक ना कर ले, जिस बात का डर था फाइनली वही हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट था ना, वो किसी ने बंद कर दिया। किसी ने किया? किसी बड़े इंसान ने किया होगा। तो सवाल बहुत सारे उठते कि यूथ की ये पार्टी है, जेंजी ने बनाई हुई पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, तो इससे डर किसको लग रहा है भाई? किसी ना किसी को तो डर जरूर लग रहा है। इस वजह से एक्स से, एक्स यानी कि आपकी एक्स नहीं, ट्विटर को अब एक्स कहा जाता है, तो उसके ऊपर से इनका अकाउंट बैन हो चुका है। तो सवाल बहुत से उठते है कि यार कौन है ये लोग जिनको इन कॉकरोचों से डर लगने लगा है? और बस कॉकरोच ही है ना भाई, कॉकरोच से कौन डरता है? लेकिन किसी ना किसी को तो डर लगा है, इस वजह से अकाउंट बैन हो चुका है एक्स वाला। खैर, आप कल को इनका इंस्टाग्राम अकाउंट में बैन ना कर दे, क्योंकि इतनी इनकी हाइप चल रही है कि 5 दिन में 19 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हो गए हैं। बट सो बात की एक बात, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ यंगस्टर। स्टे ट्यून्ड।

त्यांचा पेपर फुटलाच नाही म्हणे असं नेते मंडळी म्हणतायत. आता काय म्हणावा यांना काय देव जाणे. यू आर लिस्निंग एम जी एम 90.8 FM आरजी अदनान आपके साथ है. भाई साहब आजकल बहुत मजाक चल रहा है भाई इस दुनिया में, और बड़े बड़े नेते कह रहे हैं कि यार नेट का पेपर तो लीक नहीं हुआ, हम तब मानेंगे जब CBI हमें प्रूफ करके बताएगा कि नेट का पेपर सच में लीक हुआ है बोलकर. भाई अगर सच में पेपर लीक नहीं होता तो इतना सब बवाल तो नहीं खड़ा होता ना. पेपर लीक हुआ है इस वजह से फिर से एग्जाम हो रही है, और जो बवाल चल रहा है, लोगों का गुस्सा है, इतने सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं, किसी किसी के क्लासेस बंद हो गए हैं, और इतने सारे लोग सामने आए हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है. ये सब देखने के बाद भी अब NTA के जो प्रमुख है ना, तो उनका कहना है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, जब CBI बताएगी कि सच में पेपर लीक हुआ तभी हम मानेंगे. खैर अब इनकी बातें यही जाने, लेकिन पूरी दुनिया को पता है नीट के साथ क्या नीट नहीं हुआ है. और एक बात तो है भाई, कुछ भी हो जाए झेलना तो स्टूडेंट्स को ही पढ़ने वाला है. री एग्ज़ाम वो देगी, फिर से वो प्रेशर है, फिर से पढ़ाई करनी है, 21 जून को वो एग्ज़ाम होगी, और इन सब के बीच में चीज़ें ऐसी चलती है ना तो बच्चों का मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाता है. एक तो साल भर वो मेहनत करे, पढ़ाई करे, उसके बाद पेपर लीक हो जाए, और फिर एक नेता आता है और कहता है कि नहीं नहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ, ये हमें प्रूफ के साथ दीजिए तब हम मानेंगे. भाई और कितना प्रूफ चाहिए? अब ये बच्चों की मेहनत या उनके आंसू, उनका फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ झूठ है क्या? और इतने सारे प्रूफ मिल गए हैं, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, फिर भी आप कहते हो कि पेपर लीक नहीं हुआ, मानना पड़ेगा भाई साहब. जोरदार तालियां तो आपके लिए होनी ही चाहिए. वाह ग्रेट है, ग्रेट आप. खैर बच्चा कंपनी, ये लोग जो भी कहे, आप बस फिलहाल आपकी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, फिर से आपको एग्जाम देनी है और अपना करियर बनाना है. बाकी पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा, इसके सिवा रोटी सेक ही नहीं जाती इन लोगों की. गुड लक एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, पिछले बार से ज्यादा मार्क्स इस बार लेकर आना, स्ट्रेस फ्री रहना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा. एंड सुनते रहना.

0: बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, ये कोर्स एक ऐसा है जिसमें ना तो पूरे इंडिया से बस 100 लोग ही आते हैं, और इसी कोर्स को कंप्लीट किया है अपने छत्रपति संभाजीनगर के एक शख्सियत ने। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM, और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है, डॉक्टर शशिकांत सिंह इनके साथ जो कि एडवेंचर इंचार्ज है MGM यूनिवर्सिटी में। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो जहिंद साथियों, मैं डॉक्टर शशिकांत सिंह।
0: सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया से बस 100 लोग हैं जो ये कोर्स करते हैं, और बहुत मुश्किल कोर्स है ये। इस बारे में आज हम जानेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मुझे आप ये बताइएगा कि आप इस फील्ड में कब से हो, एडवेंचर के स्पोर्ट्स के?
1: एडवेंचर फील्ड में मैं 2012 से हूँ, तो जो मेरा जर्नी स्टार्ट है स्पोर्ट्स का 2000 से है। मैं एक एथलीट था, आई वॉज इन क्रीड़ा प्रबोधनी, आई वॉज इन साई, मैं नेशनल एथलीट हूँ। बट ICF के थ्रू, इंडियन कैडेट फोर्स के थ्रू, मैं 2012 में एडवेंचर में एंटर किया, और उसमें मैं कोचिंग कर रहा हूँ, प्लस मैं ट्रैक भी साथ में कर रहा हूँ।
0: क्या बात है सर। और सर, ये जो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है ये एग्जैक्टली क्या होता है?
1: इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, उन्होंने 5 इंस्टीट्यूट ऐसे एस्टेब्लिश किए हैं इंडिया के अंदर। 2013 में निमास में ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये इकलौता इंडिया के अंदर ऐसा सेंटर है जहाँ पे भी लैंड, वाटर और स्काई तीनों में एक ही जगह पे ट्रेनिंग मिलती है। इसमें बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्सेस है, रेस्क्यू कोर्सेस होते हैं। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं, ये करने के बाद लाइफ में हमारे पास सर्वाइविंग है, सीखना तो है, इसके साथ हम करियर भी कर सकते हैं। एटलीस्ट हम एडवेंचर के लिए, एडवेंचर में अलग अलग अपनी खुद की कंपनी डाल सकते हैं, गाइड बोल के काम कर सकते हैं, रेस्क्यू के लिए हम काम कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हमको इसमें मिल जाती है। सो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने कोर्स अभी किया है, 28 डेज का कोर्स था, इसमें हमको जो सिखाया जाता है वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल करके सिखाई जाती हैं। जैसे नॉट एंड हीचेस, रोप में जो होती है शॉर्ट सिलिंग्स होती हैं, उसको अलग अलग टाई कैसे करते हैं, जैसे हम रिवर क्राफ्टिंग करना उसके लिए कैसे है, रैपलिंग करना उसके लिए कैसे करना है, जिप लाइन करना है उसमें कैसे हम रोप को टाई करेंगे, ये बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। साथ में आर्टिफिशियल वॉल प्लस नेचुरल वॉल, ये कैसे क्लाइंब होता है, उसके अलग अलग टेक्निक्स कैसे होते हैं, रिवर क्रॉसिंग कैसे करते हैं, ये हमको वहाँ पे करवाया जाता है। वेट के साथ हमने जो ट्रैक किया वहाँ पे, वो भी माइनस टेम्परेचर में, ये ट्रैक के अंदर हमको गोरीचंद ग्लेशियर, जो अरुणाचल प्रदेश में है, हाईएस्ट पीक है वहाँ पे 16,500 फीट, चाइना बॉर्डर से लगता है हमारा यहाँ का बॉर्डर, तो वहाँ तक हम लोग गए, वहाँ -10 टेम्परेचर में हमने सर्वाइव किया, वहाँ पे हम लोग रहे और सब कुछ प्रैक्टिकली सीखा है हमने।
0: ओ, सो कुछ इस तरीके से ये पूरा कोर्स होता है, बहुत मुश्किलों भरा होता है और उतना ही एडवेंचर के साथ होता है। और भी अपनी बातें यूं ही जारी रहेगी कुछ देर के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: पूरे भारत से बस 100 लोग ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, जिनमें से अपने शहर के एक शख्सियत डॉक्टर शशिकांत सिंह, इन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स। तो सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि 16,000 फीट पर आप थे, तो ऐसे जगह पर इतनी ऊंचाई पर मेंटली और फिजिकली कितनी मुश्किल होता है, क्या क्या चैलेंजेस होती है?
1: खास बात होती है, यही एडवेंचर को अलग करता है बाकी स्पोर्ट्स से। बाकी स्पोर्ट्स में होता है कि आप वहां जाते हैं, एक तो आप विन होते हैं या लूज करते हैं, मेडल मिलेगा आपको तो नहीं मिलेगा, वापस आते हो। बट एडवेंचर एक्सपेडिशन जो होते हैं, जब हम हाइट पे जाते हैं, माइनस टेम्परेचर में जाते हैं, तो हमारे फिजिकल के साथ मेंटल जो टफनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वहां पे आपकी एक गलती और आप लॉस करोगे तो अपनी लाइफ लॉस करके आओगे या बड़ी इंजरी साथ में लेके आओगे। सो वहां हमको कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी होता है, जितना हम फिजिकली उतना मेंटली डिसीजन लेना वहां जरूरी है। और मैंने वहां जो सीखा है, वहां पूरा आर्मी का इंस्ट्रक्टर थे, आर्मी का सेटअप था, और उन्होंने यही सिखाया और मैंने ये अनुभव किया वहाँ पे कि हम सब मेंटल फिटनेस है हमारा। मेंटल अगर हम स्ट्रांग है कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा तो वहाँ पे क्लाइम होता था।
0: आपको चैलेंजेस कौन कौन से आए थे?
1: चैलेंजेस बेसिकली देखा जाए तो दो थे। एज ए एथलीट मैं फिजिकली मेंटली तो स्ट्रांग हूँ, ये मुझे स्पोर्ट्स से गिफ्ट मिला है। बट मुझे जो बेसिकली प्रॉब्लम आया, मैंने वहाँ पे फेस किया, वो पहला वेट का था। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक कराते थे 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर एक्लिमेटाइजेशन के लिए, रियल जो ट्रैक्स होते थे ये सारे, बट ये ट्रैक्स में ये होता था कि हमको पूरी वेट के साथ करना पड़ता था। हमारी पीठ पे रैकशैक जो होती है, जो बैग होती है, उसमें कम से कम अराउंड 20 केजी का वेट होता था, वो वेट लेके हमको पूरा ट्रैक करना पड़ता था। सो हम लोग को बेसिकली इतना आदत नहीं होता, हम लोग एटलीस्ट 5-6 केजी का वेट इनफ होता, उतना ही लेके हम लोग बेसिकली सह्याद्री में यहाँ पे कर लेते हैं। बट वहाँ वो पूरा 20 केजी अराउंड का वेट लेके हमको जो करना पड़ता था, वो एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट था हमारे लिए। और सेकेंड जो चैलेंज था वो था टेम्परेचर। हम लोग यहाँ संभाजीनगर में या बेसिकली रीजन्स में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है अराउंड 40 के आसपास समर में होता है, विंटर में भी जो हमारा टेम्परेचर होता है 15 या 20 अराउंड होता है, उसी नीचे नहीं जाते हम लोग। बट वहाँ गोरीचंद ग्लेशियर पे जो हम सर्वाइव कर रहे थे, वहाँ -10 टेम्परेचर था। तो लिटरली हम जहाँ पे हमारा टेंट था साइड, हर एक घंटे पे उठ के हमको टेंट साफ करना पड़ता था, उससे पूरा बर्फ आता था, आइस आ जाता था स्नोफॉल की वजह से, तो हमको साफ करना पड़ता था, तो हमारा टेंट टूट सकता था, ये होता था, हर एक घंटे की ड्यूटी होती थी। सेकेंड, जब हम लोग क्लाइंब करते थे हाइट पे, सो उस टाइम पे भी रोप के साथ एक लाइन में हम लोग क्लाइंब करते थे, बट कहीं कहीं सरफेस ऐसा लूज होता था, कहीं हार्ड होता था, हमको पता नहीं होता था, तो उसमें पैर हमारे नीचे जाते थे। तो ये बेसिकली वेट कैरिंग कैपेसिटी और दूसरा टेम्परेचर, ये दो बेसिक इशू मुझे आए वहाँ पे।
0: बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, फिजिकली और मेंटली भी फिट होना बहुत जरूरी होता है। सो और भी अपनी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, एडवेंचर के बारे में हम बात करेंगे कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम टू MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और बात कुछ ऐसी है कि हम बात कर रहे हैं एडवेंचर के बारे में। अपने साथ है डॉक्टर शशिकांत सिंह सर, एडवेंचर इंचार्ज MGM यूनिवर्सिटी। तो सर ने हाल ही में बेसिक माउंटेनिंग कोर्स पूरा किया है जो कि ऑल इंडिया से बस 100 लोग ही वो कोर्स कम्प्लीट करते हैं। तो सर ये पूरी आपकी जर्नी थी, इसमें बहुत सारा एडवेंचर आपने किया है, अच्छे और बुरे मोमेंट्स भी आपके साथ हुए होंगे। ऐसा कौन सा एक मोमेंट है, ऐसी कौन सी एक चीज है, कौन सा मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रहेगा?
1: ट्रेनिंग वहाँ का बहुत अच्छा था। ट्रेनिंग एक्चुअली मैंने जब मैं स्पोर्ट्स में था सो उस टाइम जो की थी, काफी गैप के बाद फिर से मुझे ये मौका मिला कि मैं वहाँ पे रहूँ। खासकर आर्मी पर्सन जो हमारे ट्रेनर थे ऑलरेडी सारे इंटरनेशनल क्लाइंबर्स थे, किसने एवरेस्ट कर रखा है, किसने अलग अलग पिक्स कर रखे हैं, सबने एडवांस रेस्क्यू सब कोर्सेज किए, वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स थे, सो वो ट्रेनिंग लेते थे। बट इतने गैप के बाद मैं जब स्पोर्ट्स में था, यंग एज में था, आज मेरी एज 40 रनिंग चल रही है, 40 की एज में मैं जो एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा था, सो ये चीजें तो मुझे लाइफ टाइम वहाँ का डिसिप्लिन, खास करके जो डिसिप्लिन होता था, मतलब जो टाइम हमको दिया डॉट टाइम पे हमको जाना है और 5 मिनट पहले ही जाना होता था, क्योंकि जो टाइम देते थे वो टाइम वहाँ का इंस्ट्रक्टर का होता था, अगर उससे वो टाइम पे हम गए लेट तो पनिशमेंट आता था। सो वो बहुत अच्छी चीज थी, डिसिप्लिन वो सीखने जैसा था जो अपने यूथ को भी सीखना चाहिए, बहुत अच्छा है वो लगा मुझे। सेकंड वो अलग अलग एक्टिविटीज कराई, ट्रैक की एक्टिविटीज कराई, जो फर्स्ट हमारा एक्लिमेटाइजेशन के लिए थर्ड डे पे ट्रैक कराया 25 किलोमीटर का, उसमें वेट कम रखा था उन्होंने, 10-12 kg रखा था। लास्ट का जो ट्रैक हुआ हमारा वो 20 kg के साथ हुआ, मतलब उन्होंने वो लोड भी धीरे धीरे बढ़ाया हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। रिवर क्रॉसिंग जो कराया उसके पहले थोड़ी ट्रेनिंग दी थी, बट रियल जो फील आया जब पानी में उन्होंने डाला तो वो आया था। उसके साथ हमने गोरीचंद ग्लेशियर पे आइस क्राफ्टिंग किया, शूज होता है वहाँ पे आइस के लिए, उसके नीचे क्रैम्पॉन्स लगे होते हैं जो खिल्ले होते हैं, जैसे हमारे एथलेटिक्स में यूज करते हैं स्पाइक्स, सो नेल्स होते हैं उसके अंदर, उसके साथ हम स्ट्रेट वॉल पे जो है क्लाइंब करते हैं। सो वो ट्रेनिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब पूरा आइस के अंदर हम लोग वहाँ पे ट्रैक कर रहे, अलग अलग ड्रिल्स हम करते थे वहाँ पे। तो ये सारी चीजें लाइफ टाइम एक मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकता, या कोई भी वहाँ का जो बंदा हो, कोई भी ट्रैकर हो, वो नहीं भूल सकता है।
0: बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत कुछ आपको इस एडवेंचर के जरिए सीखने को मिला है। और भी हम बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट माउंटेनिंग के बारे में एंड एडवेंचर के बारे में कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।
2: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhaji Nagar।

0: लेट्स टॉक अबाउट एडवेंचर। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। बंदे का नाम है अदनान और मेरे साथ है डॉक्टर शशिकांत सिंह सर, जिन्होंने हाल ही में बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है, जो कि पूरे इंडिया से बस 100 लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं। उनमें उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है और इस कोर्स के दरमियान उन्हें बेस्ट रोप अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो सर एग्जैक्टली ये क्या होता है अवार्ड?
1: एक्चुअली वहाँ पे अलग अलग अवार्ड होते हैं, जैसे बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिलते हैं, बेस्ट डिसिप्लिन के लिए बेस्ट मोटिवेशन का अवार्ड होता है, वैसे एक ग्रुप का अवार्ड होता है, बेस्ट रोप का अवार्ड होता है। सो बेस्ट रोप का अवार्ड ये सब हमारा लास्ट जो होता है क्लोजिंग एड्रेस होता है उसमें दिया जाता है। कर्नल जामवाल सर है, उनके हाथों से मिला मुझे वो। सो हमारे रोप का जो टाइमिंग है, असेंबली में जाने का जो टाइमिंग हो, हमारा डिसिप्लिन हो, या जो टास्क हमको दिया था वो कैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसके ऊपर से वो बेस्ट रोप का अवार्ड मिलता है। सो ओवरऑल जो हमने एक्टिविटी की थी 28 डेज में, वो सारी एक्टिविटीज, हमारा एग्जाम, हमारा फिजिकल, हमारा डिसिप्लिन, ये सब देखते हुए मुझे वो अवार्ड मिला था। तो ये बहुत अच्छा लगा कि एट द एज ऑफ 40 मुझे अवार्ड मिला, उससे काफी मोटिवेशन आया।
0: और सर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, इसे ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम तैयारी करें?
1: अगर किसी को ये कोर्स करना है तो पहले उसने तो एक साल से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, पहली चीज फिटनेस करना है। सेकेंड, इंडिया में जो अलग अलग पास सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स के हमारे वेबसाइट पे आते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, वहाँ कोर्स वो लोग डिक्लेयर करते हैं, उस टाइम जाके वो कोर्स अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे कोर्स के लिए।
0: और सर आपके नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है आपके?
1: एडवेंचर का नेक्स्ट टारगेट है, जैसे मैं 2012 से ऑलरेडी इसमें काम कर रहा हूँ और मैं कोर्स भी करके आया हूँ, तो काफी हाईली मोटिवेटेड भी हूँ, कुछ नई चीजें भी मैंने सीखी है, एड ऑन किया है उसमें। अभी ये है कि हम MGM यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हमारे चांसलर साहब हो, वाइस चांसलर साहब रजिस्ट्रार है, ऑलरेडी स्पोर्ट्स को और एडवेंचर को काफी प्रमोट करते हैं, हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं, बट इसमें और कुछ नई एक्टिविटीज मैं सोच रहा हूँ इसमें ऐड करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, जो हमारे ट्रैक्स जाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ाएं, ताकि मैक्सिमम बच्चे, हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो मैक्सिमम बच्चे इस चीज का लाभ ले सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, क्लासरूम के साथ में एक लाइफ लर्निंग, बाहर जाके नेचर के साथ कैसे डील करते हैं, सर्वाइव करते हैं, सारी चीजें सीख सकें। इस पर भी हमारा काम चालू प्लान कर रहे हैं हम लोग इन फ्यूचर। अभी हमारा जो एकेडमी की आने वाला है 26-27 जून से स्टार्ट होगा, वहां से हमारी जर्नी नई स्टार्ट हो जाएगी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आज आपके साथ बात करके एडवेंचर के बारे में जानकर। सो थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी, आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515. ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
2: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान.
0: ये है MGM 90.8 FM.

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

शनिवार के इस खूबसूरत शाम में आपका दिल से स्वागत करती हूँ मैं, दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। उम्मीद है आपका पूरा हफ्ता अच्छा बीता होगा और अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का, अपने लिए कुछ पल निकालने का। शनिवार की शाम अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर आती है, न सुबह जल्दी उठने की टेंशन, न ऑफिस या कॉलेज की भाग दौड़, बस हल्की हल्की हवा, मन पसंदीदा गाने और अपनों का साथ। तो अगर आप घर पर है तो एक कप चाय बना लीजिए, बालकनी में बैठकर मौसम का मजा लीजिए और अगर बाहर है तो इस शाम को खुलकर एंजॉय कीजिए। जिंदगी में काम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी खुद को थोड़ा वक्त देना, कभी परिवार के साथ बातें करना, कभी पुराने गाने सुनना तो कभी अपने अधूरे शौक पूरे करना, क्योंकि यही छोटे छोटे पल हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और हाँ, अगर इस वक्त कोई दोस्त या अपना आपसे दूर है तो उन्हें एक प्यारा सा मैसेज जरूर भेजिए, क्या पता आपकी एक छोटी सी बात किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो चलिए इस प्यारी सी शनिवार की शाम को खुशियाँ, मुस्कुराहटों और अच्छे गाने के नाम करते हैं। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।